0: टाइम में से वो प्यार नहीं देते उनसे चलती थी।
1: वो अब तक नहीं जानता, जब जान जाएगा, अगर जान पाएगा।

0: कब तुम्हें पसंद किया, कब तुम्हें जाने लगा और कब मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल लगने लगी, मुझे नहीं पता।
1: ये सब लव एंड ऑल, मैंने सोचा।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।